0: है
1: लाइका गोल्ड।
2: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट। क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एम्बिशियस 11-11 इनिशिएटिव एमिंग टू कंप्लीट 11 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स इन जस्ट 11 मंथ्स, फीचरिंग व्यूज, ओएसिस, ओशंस, एलीट्स, फैशंस एंड स्पोर्ट्स। देयर्स एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू, सो व्हाई वेट? बी पार्ट ऑफ दुबईस ग्रोथ स्टोरी। कॉल द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई लंदन ऑफिस टुडे ऑन 02039635757 to arrange your meeting.
3: Big Boss में इस बार मिलेगा बर्तन और एक्स्ट्रा जीवनदान, तब हंस तो मेरी जान।
4: Big Boss Season 20, every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house exclusively on Jio Hotstar.
5: Classic Nahume, आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: फिर भी मोरे जिया राम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
1: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नाही

0: This is Leica Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
2: साफो ट्रेवल, at all protected.
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
5: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: Classic Magazine. Aapke apne Leica Gold par.

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवे।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहावे।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक्खा।

है साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अखरी

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। है भी होसी जाए ना जासी, रचना

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेश, एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए, धर्म

0: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
2: Search is changing.
3: Customers aren't just using Google anymore.
2: They're asking AI.
3: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
2: One business, one recommendation.
3: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
2: Will your business be the answer?
3: Or the one that got left behind?
2: The future of search has already started.
3: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
2: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
7: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
8: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
7: Get your free tickets. Book now using the promo code LAIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
8: Exclusive media partners LAIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
9: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11,
10: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
12: Danu 11, 11. Danu Properties.
13: बोले तूने क्या कर रहा है रे
14: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ
13: ये तो बताओ कोई पता चला
14: गुरु गुरु
15: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर
13: साधू तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
14: शीघ्र शीघ्र
15: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर
14: टू बुक कॉल 0208-514-54 Book online at Eventbrite.
16: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
17: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft.
18: Cutthroat Ke Khiladi.
19: Laika Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
20: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
21: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 टू 12

0: चीज। आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: Cool music for a super hot summer time on Leica Gold.

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, Atoll Protected.
3: It's December. Thand ko bolo, goodbye.
4: Join Maharaja Atolls on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. Khoobsurat beaches, sunshine or 8 amazing Caribbean islands. Aapka intezaar kar rahe hain. Prices from just £1,499 per person. Twin share. Seats limited hai, toh aaj hi book kijiye. Visit maharajatours.co.uk or call 07956154846.
3: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
5: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place.
4: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danube 11, 11. Danube Properties.
7: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ.
8: अपना बनाया तेनू
7: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में. टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20. VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल. बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216. टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट 407 हाई रोड Ilford.
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
9: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
10: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
11: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
12: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
2: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रभु श्री राम की लीला हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव 18 सितंबर बिग थिएटर हेज टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk
3: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो एक्सपीरियंस द डिवाइन
4: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए
3: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता
4: अ स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर
5: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो
4: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
7: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 24-hour line.
8: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11, 11.
9: Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
11: Danu 11, 11. Danu Properties.
12: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
14: SonaTours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
15: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
16: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: में नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel, at all protected.
5: The wait is finally over.
6: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
5: Mirzapur is coming to the big screen.
7: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
5: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
8: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
5: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
7: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
9: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
10: अपना बनाया तेनू,
9: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का। वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम 20 पाउंड्स। वीआईपी एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फर्ड।
11: Thank you.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: सदैव मर्यादा पुरुषोत्तमं लोकनाथं श्रीराम श्रीराम.
5: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
6: Book now on diwalistory.com. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
7: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: गुड मॉर्निंग। स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की महफिल में। सोमवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 7 तारीख और वक्त मनोरंजन का, आपकी हमारी मुलाकात का, प्यारे प्यारे गीतों की सौगात का। माय नेम इज रवि शर्मा। सबसे पहले भाई काजल को धन्यवाद देते हैं और फिर अपना काम हाथ में लेते हैं, मनोरंजन। नेक नियत की गवाही वक्त देगा आपको। हमसे सच्चे दोस्त से यारी लगा के देखिए, खुद ब खुद उठा करेंगे आपके पांव इधर। आजमाइश शर्त है, एक बार आकर देखिए। उस समय रंगीन लगती है ये दुनिया बेपनाह, प्यार आंखों में किसी का घर बसा कर देखिए। आपकी नजरों से साजिश अब मुकम्मल हो गई, अब राजे दिल को हमसे जरा छुपा कर देखिए। और किस तरह होती है मिलने की दुआएं सब कबूल, आप सच्चे दिल से कभी हमको बुला कर देखिए।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Reminisce those classics on Leica Gold.
0: और Leica Gold पर शुरुआत होती है इस गीत से। भाई बहुत सारे सवाल होंगे आपके पास, शर्मा जी कहाँ गायब हो जाते हो, कभी आते हो कभी जाते हो, भाई दुनिया ही आनी जानी है, क्या करें। लेकिन इस सवाल का जवाब कि किस तरह होती है मिलने की दुआएं सब कबूल, आप सच्चे दिल से हमें जरा बुला कर देखिए।

प्यार जिंदगी है, सचमुच। बिना प्यार के कोई जिंदा है तो भाई जिंदा नहीं होने के बराबर है। अब आप पूछेंगे, भाई इतने दिन कहाँ थे शर्मा जी? बस यही प्यार बटोर रहा था। यहाँ स्टूडियो की चार दीवारी में बैठकर एहसास तो होता है पर कोई पास नहीं होता है। आप दूर दूर जहाँ भी सुन रहे हैं, स्वागत है आपका। पर आप सब की ओर से पहले तो मैं सोचता हूँ कि थैंक यू कहूँ रितु शर्मा को। जब कभी मुझे छुट्टी चाहिए वो आगे आती हैं और भाई मेरी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाती हैं और बड़ी खूबसूरती से निभाती हैं। थैंक यू वेरी मच, एक नहीं दो नहीं ढेर सारी रितु शर्मा। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं भाई, आपने मेरी जिम्मेदारी निभाई। और बहन भाइयों, बीच में कुछ तीज त्यौहार थे, कुछ कार्यक्रम थे, कुछ लोगों से मिलना जुलना भी हुआ। थोड़े से दिनों में इतने सारे काम करके आया हूँ पर काम कभी पूरे होते नहीं। काम, मैं बार बार अपने आप को याद दिलाता हूँ कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, जुड़ जाओ मनोरंजन प्रोग्राम से। थैंक यू रितु।

0: पे।
1: सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर,
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियाँ लाए।
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सेट को माइक्रो।
3: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
4: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
3: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
4: अ स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
5: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
4: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
6: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
7: SonaTours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
8: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
9: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
10: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
11: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
12: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।
13: दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा।

क्या इशारे हो गए भाई, मुस्कुरा कर देखने से पहले थोड़ा सोच लेना, कोई भी गले पड़ सकता है ऐसे हाथों से। हम तुम्हारे हो गए पक्का, गारंटीड। क्यों देखा मुस्कुरा के, गुस्से में देखो।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गीत। और बहनों भाइयों, धीरे धीरे समय हुआ जाता है समाचारों की ओर बढ़ने का। मतलब प्रिंस विलियम विल रिप्रेजेंट हिज फादर किंग चार्ल्स एट द फ्यूनरल ऑफ किंग हैराल्ड पंचम ऑफ नॉर्वे। बकिंगम पैलेस से ये सूचना आई है कि भाई राजकुमार विलियम जो है वो अपने मतलब राज्य का कहिए या राजा का प्रतिनिधित्व करेंगे नॉर्वे में, वहाँ के सम्राट की मृत्यु पर जो फ्यूनरल हो रहा है उसमें वो शिरकत करेंगे, अफसोस करेंगे जाके।
1: हो गए।
0: इसके अलावा भाई और भी कुछ खबरें हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर खबरें आप जानते हैं सब कॉन्टिनेंट की कवर करता हूँ। समय हो गया है, आइए देखते हैं क्या कुछ है आज के प्रमुख समाचारों में।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। नेपाल की बाढ़ में मरने वालों की तादाद 1355 हो गई है, 1355। अमेरिका के मायामी कार्गो विमान रनवे से बाहर निकला, 5 लोगों की मौत हो गई है वहां। भारत में आदित्य ठाकरे ने गरबा और डांडिया में मुसलमानों की एंट्री पर रोक को लेकर के एक बयान दिया है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से 1.5 लाख से भी ज्यादा मुसाफिर हवाई अड्डों पर फंस कर रह गए हैं। विस्तार से समाचार। दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे में दिल्ली नगर निगम साउथ जोन के 5 अफसरों को तुरंत फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम के साउथ जोन के जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उनके नाम है राकेश कुमार डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन, रणवीर सिंह सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साउथ जोन, ललित कुमार गोयल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साउथ जोन और सुनील चौहान ए बिल्डिंग साउथ जोन। भाई ये हादसा हुआ दिल्ली में और इसके बाद से काफ़ी छानबीन चल रही है और चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता कहती है कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। किसकी कमी से, किसकी इग्नोरेंस से भाई, किसकी गलती से ये नक्शा जो है किस तरह से पास हुआ, कैसे बिल्डिंग बनी और कैसे फिर वो गिरी है, इसकी जांच होगी। नेपाल में भी जो भाई बाढ़ आई है वहाँ मरने वालों की तादाद 1355 हो गई है, आज 13वें दिन का ये आंकड़ा है। नेपाल में बाढ़ में मारे गए लोगों की याद में आज राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में बाढ़ के 13वें दिन राष्ट्रीय शोक मनाने का ये फैसला लिया गया था। शोक की अवधि के दौरान पूरे नेपाल में सरकारी दफ्तरों और विदेशों में जो नेपाल के डिप्लोमेटिक मिशन्स हैं वहां पर उनका नेशनल ध्वज यानी झंडा आधा झुका रहेगा। दुनिया के नए नक्शे में जम्मू कश्मीर की स्थिति पर भारत के ऐतराज पर पाकिस्तान का जवाब आया है। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से दुनिया के नए नक्शे में जम्मू कश्मीर की जो स्थिति जताई गई है उस पर भारत ने ऐतराज किया और पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर भारत के बेबुनियाद दावों को पूरी तरह खारिज करता है। आपको बता दें भारत के इलाके को गलत या भ्रामक तरीके से दिखाना, भारत का कहना है कि हमें मंजूर नहीं है, भारत की सीमाएं अटल हैं और इससे समझौता नहीं हो सकता। जर्मनी में राइट विंग अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी ईस्टर्न स्टेट्स में सैक्सोनी ऑन हॉल्ट में बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। ये पार्टी मुख्य धारा की जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उनकी प्रतिद्वंदी पार्टियों से काफी आगे है। हालांकि अनुमान है कि इन्हें मेजोरिटी नहीं मिल पाएगी, लेकिन अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी का कहना है कि उसे सरकार बनाने का जनादेश यानी मेजोरिटी मिल चुकी है। अब तक आए ज्यादातर शुरुआती नतीजों में वो कंजर्वेटिव CDU से काफी आगे है। भारत की राजधानी दिल्ली में जो एक बिल्डिंग के गिरने का हादसा हुआ, दिल्ली सरकार अब लाएगी वहां बिल्डिंग रूल, सीएम रेखा गुप्ता ने बताया है। सत्य निकेतन में बिल्डिंग ढहने से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नए कानून लाने की बात कह रही हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि सरकार अधिकारियों के साथ मिलकर एक ड्राफ्ट रूल बनाने की तैयारी कर रही है। आदित्य ठाकरे ने गरबा और डांडिया में मुसलमानों की एंट्री पर रोक को लेकर के एक बयान दिया है। ऐसी चर्चा थी कि वहां वो धार्मिक कार्यक्रम है और उसमें मुस्लिम नौजवानों का आना वहां ऑर्गेनाइजर्स को शंका से भरा दिखाई पड़ता है, शक करते हैं वो। उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाले ये कौन होते हैं, उन पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, यानी उनका उनके लिए गरबा जो है वो ओपन रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई में चाहे गरबा हो, नवरात्रि हो, दही हांडी हो या गणपति उत्सव, यहाँ आपको दिखने वाले सभी लोगों की पहली पहचान मुंबई कर की है। वो चाहे कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी राज्य से आए हो, उनका धर्म या जाति कुछ भी हो, वे बप्पा के लिए आते हैं, किसी खास व्यक्ति के नहीं, और बप्पा सबके हैं। आदित्य ठाकरे का बयान। इंडोनेशिया से खबर आ रही है वहां ज्वालामुखी के फटने से वहां 8 हवाई अड्डों पर करीब 170,000 मुसाफिर फंसे हुए हैं। इन हवाई अड्डों से फिलहाल फ्लाइट्स को टेम्परेरी तौर पर रोक दिया गया है। कल संडे की सुबह जकार्ता के सोयकार्नो हट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे पहले बंद किया गया था। अमेरिका से खबर आई है वहां के मायामी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कल संडे को एक कार्गो हवाई जहाज रनवे से बाहर निकल करके हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में कम 5 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य जख्मी भी हुए हैं। अमेजन एयर का यह कार्गो हवाई जहाज लोकल वक्त के मुताबिक करीब 2 बजे उतरने के बाद रनवे से आगे निकल गया और क्रैश हो गया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: और अब हो जाइए तैयार, आ रहा है गीत का उपहार उन लोगों के लिए जो आज अपना भाई जन्मदिन मना रहे हों, ना भी मना रहे हो तो आज मना लीजिए, क्योंकि गीत आ गया है तो अब मनाना ही पड़ेगा ना। हैप्पी बर्थडे हम कहेंगे और आपको स्वीकार करना होगा। अमित कुमार और साथियों की आवाजें

0: अमित कुमार और साथियों की आवाजें, और भाई ये गीत था फिल्म घर का चिराग से, घर का चिराग, आई लव यू टू।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: जी हाँ, साउथ ऑल ट्रेवल का संदेश। साउथ ऑल ट्रेवल इज नोन फॉर इट्स कॉम्पिटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई। कॉन्टैक्ट साउथ ऑल ट्रेवल टूडे ऑन 0208-574-8410। साउथ ऑल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Look at you. The future is unpredictable at times, but the Open University are the experts in online learning, allowing you to fit study around your life. What's more, you'll have support from dedicated tutors every step of the way. Now, suddenly your possibilities are open. Register by the 10th of September to get started. The Open University. The future is open.
4: ये है Like a Gold.
0: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट TravelHubWorld.com।

0: Petco Microwave Food.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. London, get ready for an unforgettable night.
1: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
0: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
1: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
0: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
1: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
0: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
2: What food make dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
3: To IA Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
2: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak. Fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
3: Friends, family ya special night out. Isi यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
0: डिस्कवर द मैजिक ऑफ स्विट्जरलैंड विद मंत्रा हॉलीडेज सीनिक स्विस टूर. फ्रॉम द स्टनिंग स्विस आल्प्स टू इंटरलाकन, लुसर्न, माउंट टिटलस एंड मोर. एंड दिस अक्टूबर हाफ टर्म वी हैव गॉट आवर लोएस्ट प्राइस ऑफ द ईयर. कॉल 02037736333 और विजिट mantrahollidays.co.uk.
4: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
5: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGoon.com.
6: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 एम टू 1 पीएम ऑन Leica Goon रेडियो, Leica रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Leica रेडियो मिडलैंड्स पर.
7: और भाई अब देखिए ये आनंद बख्शी की कलम से निकला हुआ कमाल. आम बोलचाल की भाषा को और कभी कभी तो ऐसी शब्दावली को वो गीतों में पिरोकर पेश करते हैं कि भाई गीत तो अमर हो ही जाता है लेकिन हर किसी को वो मुहावरा भी समझ में आता है कि ऐसा क्यों कहा गया.
8: तुझे मैं भूल जाऊं
7: भूल जाऊं.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: Let me tell you the rates. By 1 pound ke badle, they are giving 127.91 Indian rupees. और पाकिस्तानी रुपए दे रहे हैं एक पाउंड के बदले 375.6, अफगान अफगानी 88.32, बांग्लादेशी टका 166.53, श्रीलंकन रुपए 444.29 एंड केनियन शिलिंग्स 175.19.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: And at this time, the gold is sold at the rate of 104.7 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
5: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Lyca Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
7: साफो ट्रेवल Auto protected.
8: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो एक्सपीरियंस द डिवाइन
9: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए
8: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता
10: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर
11: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा
10: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क
12: We're finally going home for the wedding.
13: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
12: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
13: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
12: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
13: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
12: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Lyca Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागसन
14: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी सो नाउ Be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
15: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place.
16: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
17: Danube 11-11, Danube Properties. Danube 11-11.
18: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
19: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल.
20: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
19: Available at ethnic grocery store near you. गणपति बाप्पा मोरिया.
3: मनोरंजन with Ravi Sharma.
21: रफी साहब की आवाज में ये गीत हमें लेकर चलेगा 11 बजे की खबरों तक.

0: जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ। भाई ये गीत हमें ले आया खबरों के नजदीक, और खबरों में अमेरिका के मायामी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कल एक कार्गो हवाई जहाज रनवे से बाहर निकलकर दुर्घटना का शिकार हो गया। 5 लोगों की मौत हुई और 5 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। और यहाँ चांसलर जो अपनी मेजर स्पीच तैयार कर रहे हैं, भाई सबकी निगाहें लगी हैं क्या होगा उनके भाषण में। लेट्स
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: The top stories this hour. The Chancellor is making his first major speech in the role, saying the government has a determination for growth and a belief in Britain's future. Speaking in Coventry, John Healey's been revealing details of a £150 million fund for firms in the north of England. He started by recalling his participation at the G20 meeting in the US last week and heaping praise on his predecessor.
3: I was proud to have behind me the work begun by Keir Starmer to re-establish Britain as a respected voice among our allies, and the work begun by Rachel Reeves to recover Britain's fiscal discipline. I will build on both as Chancellor.
2: Meanwhile, Jaguar Land Rover's confirmed plans to cut 4,000 jobs over the next 2 years. Britain's largest car maker is looking to save £1.7 billion in costs. The Unite Union says it will leave no stone unturned to support workers. A senior government minister has condemned the behaviour of protesters last night at anti-migration demonstrations in Portsmouth. Hundreds gathered in a standoff with police blocking roads around Eastney Marina. 5 people are dead and 5 others were seriously injured after an Amazon cargo plane overshot the runway while attempting to land in Miami. The company says it's working to understand how it happened. 2 US envoys say they've had encouraging talks in Kyiv. Steve Witkoff and Jared Kushner went there after meeting Vladimir Putin in Moscow on Saturday. With aerial attacks escalating, they travelled between the capitals by train. Mr. Kushner insists they're looking for more than just a stopgap deal.
4: Not just to figure out how do we end the current war, but how do we create the right conditions and arrangements for a long-term durable peace that allows Ukraine to use the amazing bravery, ingenuity, strength that it's used to get through the last years of war.
2: And it's claimed laughter therapy could help people with a common lung condition breathe better. A trial in Turkey suggests it could be as effective as breathing exercises. From Sky News, I'm Faye Rowlands.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
5: Not only is Aldi's Almat Bio Washing Powder approved by Good Housekeeping for 2 years running, it's also just £3.89. That's less than half the price compared to Ariel Washing Powder from Tesco at £10. So go on, give Aldi a spin. For full T's and C's, see aldi.co.uk/swap.
1: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: वेरी गुड मॉर्निंग। आज के मौसम के विषय में बता दें भाई, दोपहर बाद के मौसम में सनशाइन तो डेवलपिंग है ही, लेकिन कुछ देर के बाद कहते हैं बादलों के भी घिराने की पूरी आशंका बनी हुई है, और शाम को जो है आसमान फिर साफ होगा और गर्म दिन रहेगा पिछले दिनों के मुकाबले। टुनाइट इट विल बी क्लाउडी एंड वेट विद आउटब्रेक्स ऑफ रेन। तो साहब अधिकतम तापमान यानी मैक्सिमम टेम्परेचर लंदन में 24 डिग्री सेल्सियस और मिडलैंड में 20 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
6: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: और बहन भाइयों, हम आ गए उस मोड पर जहां आप चिंतन सुनते हैं, और उसके प्रसारण से पहले एक सूचना आपको हम पहुंचाना चाहते हैं। और सूचना यह है कि विश्व में शांति और सद्भाव की ज्योति जगाने के लिए आर्य समाज लंदन आपको विश्व शांति महायज्ञ में सादर आमंत्रित करते हैं। आइए वैदिक प्रार्थना, आध्यात्मिक चिंतन और एकता के लिए ये विशेष अवसर पर परिवार और मित्रों के साथ जुड़िए। नोट कर लीजिए, रविवार 13 सितंबर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये यज्ञ होगा, आर्य समाज लंदन 69 आर्गाइल रोड लंदन में। पोस्ट कोड है W13 0LY और बुकिंग के लिए संपर्क नंबर है 02089911732। तो भाई ये सूचना थी और आइए सुनते हैं थॉट फॉर द डे, आज का विचार यानी चिंतन।

आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें वेस्ट लंदन से राजीव शर्मा ने भिजवाया है। और एक बात पर भाई वो विचार करने का आग्रह करते हैं कि सोचिए जरा, जब दो व्यक्ति लड़ते हैं या दो पशु भी लड़ते हैं तो आसपास की खेती को कितना नुकसान होता है, दो देश लड़ते हैं तो तबाही कहां कहां तक प्रभावित करती है, अकाल, भूखमरी, अत्याचार और मृत्यु किसी भी युद्ध का एक नतीजा है। जंग का नतीजा क्या होता है, इसमें हार जीत नहीं होती, दोनों ही हारते हैं लड़ने वाले, और जीतते हैं तो भाई अनुभव से बता रहा हूं कि जीतता है तो जब आप किसी के साथ लड़ाई झगड़े में मुकदमे में पड़ जाएं तो जीत वकीलों की होती है, यकीन मानिए। देश जब जंग शुरू करते हैं तो हथियार बेचने वालों की जीत होती है, नुकसान तो उन दोनों का होता है। अब राजीव कहते हैं कि ये फैसले जो है ना जंग के, ये पॉलिटिशियंस लेते हैं, लेकिन नतीजा कौन भुगतता है, एक आम आदमी। जब कोई भी युद्ध अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव सालों तक उस देश पर और उस देश के नागरिकों पर मंडराता रहता है। अब साहब इन्होंने कुछ खोज की है और पता चला कि दुनिया में इस समय कितनी जंगें चल रही हैं, कितने युद्ध हो रहे हैं। जवाब मिलेगा 65, छोटी बड़ी जंगें। ये गूगल भाई साहब ने बताया है, वो कहते हैं उनसे पूछिए कि इन युद्धों में, इन लड़ाइयों में लगभग कितने लोग सालाना अपनी जान गंवा रहे हैं। जवाब मिलेगा 1 से 2 लाख के बीच। और मजे की बात के जान गंवाने वाले सारे निर्दोष होते हैं, डायरेक्टली उनका कोई इरादा नहीं होता लड़ने का, या यूं कहिए कि उनका कोई हित नहीं होता है लड़ने में। इतिहास गवाह है कि कई नामचीन लोगों ने नॉन वायलेंस के लिए, अहिंसा के लिए बलिदान दिए। सब बात शांति की करते हैं, शांति की, प्रगति की बात करते हैं, लेकिन युद्धों की शुरुआत करते हैं यही लोग। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें कि दुनिया से जंगें खत्म हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्र।

0: ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति शांति सर्वम शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि। कण कण में शांति हो, हम जो फसलें उगाएं उनमें शांति का संचार हो, जल में शांति हो, वायु में शांति हो, अंतरिक्ष में यानी स्पेस में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, हमारी औषधियों में, वनस्पतियों में, कण कण में, जन जन में शांति हो, ये प्रार्थना करें। विचार करें तो बहन भाइयों, इलाज यही है। जंगों से विनाश होता है, शांति से विकास होता है।
1: चिंतन चिंतन
0: देशों के बीच ही नहीं, लोगों के बीच भी, पड़ोसियों के बीच, परिवार में, कारोबार में शांति की स्थापना हो, ये प्रार्थना है।
2: नफरत

0: आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें राजीव शर्मा ने भिजवाया था ईलिंग से, ईलिंग वेस्ट लंदन से, और जो गीत हमने आपको सुनवाया मोहम्मद रफी साहब और साथियों की आवाज में, फिल्म देश प्रेमी से लिया गया था। और इसी बीच भाई चिंतन के बहुत सारे प्रशंसा के शब्द जो है चिंतन के लिए आ रहे हैं। वत्सला कह रही है, अच्छा लगा चिंतन, प्लीज आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है तो एक भजन सुनवाइएगा भाई। हाँ, कई लोगों के लिए आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए भाद्रपद चल रहा है और कृष्ण पक्ष की आज एकादशी यानी अजा एकादशी है। ये गुजरात और पंजाब, उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में थोड़ा फर्क है। महाराष्ट्र में भी अभी श्रावण है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार जन्माष्टमी का जो होता है वो रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्षीय अष्टमी को हुआ था, तो उस हिसाब से ये भाद्रपद चल रहा है। पर जो भी समय है, प्रार्थना तो करनी ही चाहिए। आपने जिस गीत की मांग की है मैं कार्यक्रम में आगे चलकर शामिल करूंगा। वत्सला जी, हमारी नीला चौधरी जी कहती है, वेलकम रवि भैया, और चिंतन सुनकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आप ही के लिए होता है ये चिंतन प्रेमी है। कल इतने लोगों से मुलाकात हुई एक कार्यक्रम के दौरान, हर किसी ने चिंतन का जिक्र किया और कहते हम प्रतीक्षा करते हैं चिंतन की। थैंक यू जी। विजय सटन से और पम्मी सिंह स्लाव से, अर्जन जी कहते हेलो रवि शर्मा, चिंतन वाज वेरी बेस्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। और भाई चिंतन के प्रेमी है सीजर फर्नांडिस, प्रदीप सोलंकी, रंजन, हरविंदर, जैस्मीन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत से हमारे सैनी साहब, और आपका नाम पढ़ा नहीं जा रहा है भाई, नाम जरूर लिखा करें, अब नहीं तो मुझे ढूंढना पड़ता है। अरे हितेश भाई हैं, हितेश भाई नीचे नाम लिख दिया करो आप, हमारे रेगुलर लिसनर हैं गुजरात में। जय श्री कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। तो साहब चिंतन से निकलते हैं और जुड़ते हैं अपने मूल रंग किसे यानी मनोरंजन के मनोरंजक रूप से। आज का चिंतन, आज का विचार समाप्त होता है।
1: चिंतन, चिंतन।
0: एक बार फिर याद दिला दें भाई, जो सूचना हमें मिली है, हमारी एक बहन लिखती है कि ये जो विश्व शांति की आपने बात की, हम भी जुड़ना चाहते हैं उन प्रार्थनाओं में। तो भाई बता दूं आपको कि विश्व में शांति के लिए, युद्धों की बंदी के लिए, सद्भाव के लिए आर्य समाज लंदन आपको विश्व शांति महायज्ञ में आमंत्रित कर रहे हैं वैदिक प्रार्थनाओं के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, शांति अंतरिक्ष शांति, आप भाई पानी में, जल में, वायु में, आकाश में शांति स्थापित हो, प्रार्थनाएं होंगी। तो ये हो रही हैं 13 सितंबर रविवार को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक, आर्य समाज लंदन, 69 आर्गाइल रोड, W13 0LY। और बुकिंग के लिए उनका संपर्क नंबर है 02089911732। चिंतन समाप्त होता है।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. क्या रेट चल रहा है आज? एक पाउंड के बदले कितने पैसे दे रहे हैं SBI वाले? SBI UK कहते हैं कि 127.35 इंडियन रुपीस फॉर वन पाउंड वी आर गिविंग, अच्छा रेट है, भिजवाइए। और भिजवाने का तरीका, किसी भी ब्रांच में चले जाइए, यस एनी ब्रांच, SBI की किसी ब्रांच में, या फिर ऑनलाइन, या फिर वो जो उनका योनो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू से भी, योनो SBI UK मोबाइल ऐप के थ्रू आप पैसे भिजवा सकते हैं। ध्यान रहे, शर्तें लागू हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: Get ready UK, Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night.
3: Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
2: 31st October, Mattioli Arena Leicester, produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel, at all protected.
8: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
8: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
9: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
10: Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
11: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
10: Rich, authentic taste every single time.
11: Royal Chai, brewed for business.
10: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
12: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
13: Humse sasta kahin nahi mil sakta.
14: TravelHub.
13: At all protected.
12: Leica.
15: और लीजिए साहब, संगीत के क्षेत्र में उतरने जा रहे हैं, गीत सुनवाने जा रहे हैं आपको, लेकिन इस गीत की फरमाइश आई है। बैक टू बैक दो गीत आप सुनेंगे। पहला गीत जिनकी फरमाइश पर आया है भाई, उनके नाम है मेरे पास, कहाँ है, यहीं कहीं थे। चलो पहले गीत सुनिए और गीत के बाद
16: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोको नूडल्स।
17: सुनो एक तराना, नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे,
15: आंगन में मेरे सवेरे सवेरे क्या हुआ, यही पूछा है भारती, हविशा, कांता, निर्मा एंड सारा पटेल ने। अब भाई ये इतने सारे लोग एक साथ, पूरी की पूरी गैंग कहाँ मिल गई भाई फरमाइश करने के लिए? कहते उस शो में जिसमें गा रहे थे, धूम मचा रहे थे, रंग जमा रहे थे भाई, हमारे मित्र जर्मनी से गायक कलाकार जो है फाहद। फाहद भाई इतने सुरीले कलाकार हैं, उन्होंने बहुत लोगों को खींचा, थिएटर भरा हुआ था और उनकी आवाज़ का मज़ा ले रहे थे। ऐसे में शर्मा जी भी फंस गए भाई, इतने लोग मिले। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार मिला भाई। इमरान भाई थैंक यू वेरी मच, और वो सभी लोग जिन्होंने ग्रीटिंग्स दिए, लाइका के प्रेजेंटर्स के नाम आपके नाम है ये गीत।

और बंजारे के साथ बंजारन मनीषा शर्मा भी आ जाएं, वो भी गाएं और भाई संगीत में साथ निभा रहे हो जाने माने कलाकार पटेल साहब, नौशाद साहब, क्या कहने हैं।

0: जा, अपने घर जा, जिस घर में जन्मी, खेली, कूदी, बड़ी हुई, पढ़ी लिखी, वो घर अपना घर नहीं है। भाई का घर क्या? वो भाई का घर है, पिता का घर है, अपना घर तो वो है जो पति का घर है। भाई बहुत प्यारा गीत, इमोशनल गीत, यशुदास पामिला चोपड़ा और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत हमने सुनवाया आपको। पलियां किथे ते चलियां किथे, इमोशनल गीत। राखी का त्योहार था, राखी पर आई होंगी बहुत सारी बहनें भाई के घर, लेकिन भाई फिर कहते अब जा अपने घर, घर तो वही है तेरा,
1: तू अपने घर जा।
0: और भाई आपको बता दें कि एक हाँ दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, उसके बाद बाली ब्रह्म भट्ट आएंगे और अगले 3 घंटे वो आपके साथ बिताएंगे, मीठी मीठी यादों के साथ, फिल्मी बातों के साथ।
2: दिस इज लाइक अ गोल्ड फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
3: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।
0: और ये गीत आपके नाम आनंद पटेल जी, आप किसी को भी गायक बना सकते हैं।
4: शर्मा के न जा।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: जाने मन जाने मन भाई, व्हाट ए सॉन्ग दिस वाज. और शहनाई फिल्म का गीत था ये, रवि का संगीत था और एक्टर कौन थे भाई, मेरे ख्याल विश्वजीत थे उसमें. अब पुरानी फिल्मों के बारे में बहुत अच्छी पुख्ता जानकारी तो बाली भाई के पास होती है, लेकिन विश्वजीत और राजश्री थी, वी शांताराम की बेटी. तो भाई उस जमाने में बोलबाला था इन कलाकारों का, इन एक्टर एक्ट्रेसेस का. अब एक सूचना है हमारे पास आप तक पहुँचाने के लिए.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
0: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट.
2: लाइका एक्स्ट्रा पर भाई हमारा नया एपिसोड जो है पॉडकास्ट का 32 वो आ गया है, जरूर देखिएगा. इसमें भाई एक कलाकार से मेरी मुलाकात हुई और वो बातचीत हमारी संगीत के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देगी. भाई मोहम्मद वकील एक गायक कलाकार हैं, सुरीले और संगीत की काफ़ी समझ है, परख है उन्हें. और हमने बहुत सारी बातें की और आपको लगेगा कि भाई वो बातें हर संगीत प्रेमी के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है. इन द स्पेशल एपिसोड आई सेट डाउन मैं बैठा उनके पास कैमरे के सामने और सवाल निकलते गए और जवाब मिलते गए. मोहम्मद वकील टू एक्सप्लोर द स्टोरी बिहाइंड हिज म्यूजिकल जर्नी, ज़रूर सुनिएगा. आप ये तो जानते ही हैं कि लाइका एक्स्ट्रा के पॉडकास्ट जो है वो अवेलेबल हैं स्पोटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर हमारे एपिसोड्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जरूर देखिएगा.
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
5: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
6: We're not having that, are we?
7: No. Oi, hear that? It's water and cans.
8: And fix those drips and drops.
9: And take shorter showers, yeah?
10: Because when we work together, it all adds up.
11: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
3: Like a goat.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
12: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
13: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
12: विजिट travelhubworld.com.
14: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन.
15: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
14: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
16: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर.
17: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
16: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
18: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
19: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
20: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 hour line.
21: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
22: The
1: man will be 11, 11.
13: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
22: Dubai is the place.
1: 11, 11.
13: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
1: Danu will be 11, 11. Danu Properties. Danu will be 11, 11.
23: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रभु श्री राम की लीला हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव 18 सितंबर बिग थिएटर हेज टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें श्री राम लीला .theshowmanstudio.co.uk

ये शहनाइयां दे रही हैं दुहाई, कोई चीज अपनी हुई है पराई, किसी से मिलन है तो किसी से जुदाई। आंसुओं को पढ़ के देखिए, दर्द है, खुशी के आंसू नहीं है।

ये गीत हमें लेकर के चलेगा 12 बजे की खबरों तक। और भाई खबरों में चर्चा है पानी का, कोई खर्चा नहीं है पानी का, पर फिर भी क्या कहें साहब। नेपाल की जो समाचार आ रहे हैं, मृतकों की संख्या बढ़ रही है, पानी के भी कई रूप हैं, पानी जिंदगी है और कहीं कहीं पानी मौत। पानी का रंग पहचानिए, कौन से रंग का है ये पानी, सुख का, दुख का, छांव का, धूप का। जब ये फिरता है ना किसी चीज पर, पानी फिर दिया,

जब ये फिरे उम्मीदों पर तो इसका रंग समझ ना आए, और जब ये मेहरबान हो तो खेती लहलहाए। आंख का पानी मर जाए तो कहते हैं कि शर्म हया सब खत्म हो जाए। पानी रे पानी।

0: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ये गीत ले आया हमें खबरों के नजदीक। भाई क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी है और महिला क्रिकेट में एशिया कप के मुकाबले चल रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान की महिलाओं को 7 विकेट से हरा दिया, लेकिन आज देखते हैं क्या करती हैं पाकिस्तानी महिलाएं। हांगकांग के साथ उनका मुकाबला है और बड़ा इम्पोर्टेंट मुकाबला है।
1: पानी रे पानी,
0: अब से लगभग 3.5 घंटे बाद मैच शुरू होगा। सुनते रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क।
2: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
3: The top stories this hour. The Chancellor has used his first major speech in the job to insist the UK economy is turning a corner. John Healey says he'll make Great Britain growth Britain again. He also wants to control government spending ahead of next month's budget and promised £150 million to go towards fast-growing businesses in the north of England. Shadow Chief Secretary to the Treasury Richard Fuller thinks it's more of the same.
4: There's nothing that particularly indicates a change in policy on tax and spend. Unfortunately, it looks a bit like John Healey is Rachel Reeves on repeat, coming out with the same answers to the same problems.
3: Meanwhile, Jaguar Land Rover's confirmed plans to cut 4,000 jobs over the next 2 years. Britain's largest car maker is looking to save £1.7 billion in costs. Around 34,000 staff work in its UK operations. Our business correspondent Paul Kelso in Solihull says the firm's battling big global pressures.
5: Tariffs is the enormous one. US tariffs have affected Jaguar Land Rover's ability to sell into its biggest export market, which is the US. Brexit has made supply chains much harder. So you have this confluence of issues, and of course here at JLR they were shut down for 6 weeks last year because of a cyber attack.
3: 5 people are dead after an Amazon cargo plane overshot the runway at Miami's main airport. All flights at the airport have been halted, with all runways closed. Hundreds of protesters turned out in Portsmouth last night to demonstrate against migrants arriving in the country after crossing the channel illegally. They clashed with police and blocked roads for hours in the area. UK house prices have recorded their first annual fall in nearly 3 years. Lloyds says prices were down 0.4% in August compared to the same month in 2025. And the in-betweeners are back. Netflix has announced production has begun on a third movie. Actors Simon Bird, James Buckley, Blake Harrison and Joe Thomas will reprise their roles as Will, Jay, Neil and Simon. From Sky News, I'm Faye Rowlands.
2: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: Very good afternoon to you. Weather-wise, भाई क्या कहें, धूप भी खिलेगी और बादल भी घिर के आएंगे और रात को तो थोड़ी बहुत बारिश की आशंका भी बनी हुई है। दिस आफ्टरनून विल सी सनशाइन डेवलपिंग फॉर अ टाइम, बट थिकर क्लाउड विल बिल्ड इन अगेन बाय द इवनिंग। तो भाई ये मिला जुला मौसम चलेगा, लेकिन टेम्परेचर वाइज टुडे इन लंडन इट इज 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम एंड इन मिडलैंड इट विल बी 20 डिग्री।
2: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits.
6: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
7: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
8: Travel Hub.
7: At all protected.
2: Leica. This is Leica Gold. Non-stop classics.
0: स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम दौर में. My name is Ravi Sharma. दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ. और रीजे साहब, इस तीसरे दौर की शुरुआत इस गीत से करते हैं. ये बताइए, आपको प्यार कैसा चाहिए, यार कैसा चाहिए, दिलदार कैसा चाहिए? एक जमाना अभी था भाई, खान बनना चाहते थे सब फिल्मी दुनिया में, पर इससे पहले एक और जमाना था जिसमें हर कोई अपने आप को कुमार कहलवाने में फख्र महसूस करता था. यानी जो ऑलरेडी खान होते थे वो भी कुमार बन के आते थे, जैसे कि यूसुफ खान साहब दिलीप कुमार बन के फिल्मों में छाए रहे. बताइए कैसा चाहिए, खान चाहिए कि कुमार चाहिए।

0: बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए भाई हमने ये गीत आपको परोसे और अब देखते हैं कुछ रिएक्शंस आए हमारे चिंतन की और गीतों के बारे में लोग लिख रहे हैं। ज्योति और गिरीश शाह लिखते हैं भाई गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, अब तो गुड आफ्टरनून हो गया है पर आपका पिछले घंटे में मैसेज आया था। गिरीश ईलिंग से कहते हैं बेटियाँ त्रिशंकु जैसी होती हैं, यानी बीच में झूलती हुई, उधर मायका बोलता है कि तू पराया धन है और ससुराल वाले कहते हैं कि ये तेरे पति का घर है, तू मायके से नहीं लेके आई है। नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी। विजय सटन से लिखते हैं कि थैंक यू वेरी मच, अनदर वन क्या, एक गीत अच्छा लगा आपको, थैंक यू, और भी आएंगे। सलाव से रानी का संदेश, उल्लास टोरंटो में हमें भाई वहाँ से मैसेज भेजते हैं और सत्यनारायण सैनी भारत में सुनते हैं, जुड़े रहते हैं हमारे साथ। मृदु वीरेंद्र चौधरी जी, आपको क्या पसंद आया भाई, आपका अप्रिसिएशन तो मिल गया पर किस बात के लिए, तालियां वालियां भेजी हैं आपने, थैंक यू वेरी मच। और बुशी से जगदीश, अर्जुन और भाई महेंद्र बजारिया है रोसेन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी भारत से हैं, कौन है आप हैं, समझ गए आप वही हैं, थैंक यू वेरी मच। और उपाध्याय जी, संजय उपाध्याय, सो नाइस ऑफ यू भाई, जब हम कभी बाहर जाते हैं ना तो वैसे तो बहुत कम जाना होता है, हम तो घर से स्टूडियो तक के सफ़र में जो है काफ़ी थक जाते हैं क्योंकि करीब 2 घंटे का सफ़र होता है, लेकिन जब कभी बाहर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो इतने प्यारे प्यारे और न्यारे न्यारे लोग मिलते हैं, उन्हीं में से हमारे संजय जी भी एक हैं। और इसी बीच भाई इंटरनेशनल हिंदी सोसाइटी और कथा यूके की ओर से इंटरनेशनल सिद्धाश्रम में एक हिंदी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है भारत में और भारतवंशी जहां भी होते हैं वहां उसे मनाते हैं, तो हिंदी के कवियों से, हिंदी के लेखकों से मुलाकात हुई और एक साहित्यिक गोष्ठी कहिएगा एक शाम जो है हिंदी के नाम से तेजेंद्र शर्मा ने आयोजित की और भाई हमारे कपूर साहब अशोक कपूर जी और हमारे देवेंद्र अरोड़ा जी, तो इनकी संस्था है इंटरनेशनल हिंदी सोसाइटी, उसके भी भाई तरफ, उसकी तरफ से भी बहुत सुंदर कविताओं का श्रवण और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था। और राज राजेश्वर गुरु जी जो इंटरनेशनल सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर से हैं, उनकी ओर से जो सुविधाएँ दी गई, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कर दें माता। और अब फिर से पैसों की बात करें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And let me tell you the competitive rate. £1 के बदले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके दे रहे हैं 127.35 रुपीज, 127 रुपए और 35 पैसे का रेट चल रहा है। You can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai. Like a gold. Like a gold.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96, परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून, टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
0: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
0: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
4: The wait is finally over.
7: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
4: Mirzapur is coming to the big screen.
8: गद्दी ना तो विरासत से मिलती, ना सियासत से।
4: Power, revenge और Mirzapur की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल।
9: अबे कालीन भैया है वो, किंग ऑफ Mirzapur।
4: पंकज त्रिपाठी एज कालीन भैया, अली फजल एज गुड्डू पंडित और Mirzapur के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर। Mirzapur द मूवी इन सिनेमाज नाउ।
8: Mirzapur में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
10: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
11: अपना बनाया तेनू,
10: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का। वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफुट टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फट टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फट।
12: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
13: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
14: Have you noticed the way fans shout at football matches?
15: Oh, wake up!
14: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
16: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
17: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
16: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
17: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
18: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
17: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
3: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: And let me tell you, the artist of the week this week is सप्ताह के कलाकार हैं, सुरीले गायक कलाकार। भाई खासकर अगर कोई शास्त्रीय संगीत पर आधारित कोई गीत किसी के होठों पर सजाना हो तो फिर मन्ना डे जी को बुलाना हो। मन्ना डे।
19: ओ मेरी मैना, तू मान ले मेरा कहना, अरे मुश्किल होगा।

क्लासिकल धुनों पर तो भाई इनकी आवाज सजती ही रही है मन्ना डे साहब की, लेकिन महमूद के लिए कॉमेडी सॉन्ग भी अगर उन्होंने गाए तो भाई महमूद के होठों पर वो गीत जमकर बहुत छाए।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: आज वही जो लोग जन्मदिन मना रहे हैं उन्हें भी बधाई देते चलें। यहाँ ब्रिटिश राजनीति में एक नाम है आलोक शर्मा का। भाई रेडिंग से ये पूर्व मंत्री भी हैं और टोरी पार्टी के एक बड़े सम्मानित सदस्य हैं। आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। 1967 में जन्मे थे ये। इनके अलावा साहब जन्मदिन मनाने वालों में एक नाम शामिल है भारत के एक राजनीति के पॉलिटिशियन का, और वो हैं राजस्थान से। राजस्थान से उनका डेप्यूटी सीएम रहे हैं या अब भी हैं मालूम नहीं, लेकिन बहुत चर्चित नाम रहे हैं। लेकिन एक और नाम याद आ रहा है, नीरजा भनोट। भूले तो नहीं होंगे आप उस लड़की के बलिदान को। भाई वो एयर होस्टेस थी और अमेरिकन एयरलाइन के एक हवाई जहाज को जब अगवा किया गया और उसे कराची ले जाया गया, तो पाकिस्तान में आतंकवादियों के साथ जूझते हुए उनसे यात्रियों को बचाते हुए और उस लड़की ने अपनी जान दी थी। उन्हें भारत ने भी भाई उन्हें सम्मानित किया, अमेरिका ने भी और पाकिस्तान ने भी। उसका बलिदान जो है तीनों देशों ने स्वीकार किया। और साहब जन्मदिन कौन मना रहे हैं? सचिन पायलट। हाँ, वो राजस्थान के जिनका मैं जिक्र कर रहा था, सचिन पायलट हैं वो जिनका आज जन्मदिन है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। और भाई आपके घर में परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएँ। स्टूडियो में जैसा मैंने बताया कि बहुत ठंड होती है हमारे यहाँ, दिल करता है कि रजाई लेके आया करें। स्टूडियो पूछता है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर प्रोग्राम से पहले स्टूडियो खुद तुमसे पूछे कि बता तेरी रजाई कहाँ है।

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भाई एक दो सूचनाएं हमारे पास हैं आप तक पहुंचाने के लिए, और उनमें एक तो ये है कि कई प्रोग्राम लाइंड अप हैं और आप कहीं जाना चाहेंगे, तो एक तो भाई बिग बॉस इज बैक, द 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज बैक, होस्टेड बाय सलमान खान. द शो एयर्स एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर टीवी एंड जियो हॉटस्टार फ्रॉम दिस संडे द 6th of September, यानी जो कल गुजर गया, कल से शुरू हो चुका है ये कार्यक्रम, तो साहब देखना मत भूलिएगा. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार विल स्ट्रीम एवरी एपिसोड अलॉन्ग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस. तो साहब ये सूचना आप तक पहुँचानी थी. एक और कार्यक्रम की याद दिलानी है, याद दिलाना चाहता हूँ, और वो कार्यक्रम कहाँ है, कब है भाई? उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, और यकीन नहीं आता ये तशरीफ़ ला रहे हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 30वीं बरसी के अवसर पर. सिर्फ एक दिन के लिए एक शो लेकर आ रहे हैं संडे 18th April 2027 को, अगले साल, एट O2 लंदन. रेडियो पार्टनर इज लाइक अ रेडियो ऑफ कोर्स. और मैं जिस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को गए हुए 30 बरस हो गए, ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, क्योंकि बारबीकन में उन्हें सोने के मुकुट से भाई सम्मानित किया गया था, उस प्रोग्राम में भी मैं मौजूद था. उनका एक प्रोग्राम मैंने कॉम्पेयर भी किया था वेम्बली में, और उसे देखने के लिए नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला और कई जो है फिल्मी हस्तियां मौजूद थी ऑडियंस में, मैं स्टेज पर था उनके साथ. और वो दिन, और उसके बाद एक फिल्म में भी हमने बैठ करके एक शो देखा, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की साथ घूमते फिरते. उस वक्त ये एहसास नहीं हो रहा था कि नहीं तो तस्वीरें बना लेते भाई, ऐसी महान हस्ती म्यूज़िक के तो ऐसे पारंगत, क्यों कहिए कि भाई वो उनकी आवाज़ कुछ ऐसी थी ना जैसे वो क्या है कि अमेरिकन सिंगर हैं उन जैसी आवाज़ में वो गाते थे. क्या नाम उनका दिमाग से उतर रहा है, आपको याद है ना? तो सोच लीजिए, पर उसे मान लीजिएगा.
0: ये है लाइका गोल्ड.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
2: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर रहे उस दौर की, और हर दौर की हम कहेंगे एक ऐसी गायक कलाकार जोड़ी जिसने कितने ही अमर और मधुर गीत फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से हम संगीत प्रेमियों को दिए. सुन सुन के हम एंजॉय करते हैं, एंजॉय कीजिए. ज्वेल थीफ फिल्म का गीत है, 1967 की फिल्म. उन दिनों बड़ी बड़ी बैनर्स वाली फिल्में जो है भाई वो फ्लॉप हो रही थी, लेकिन ये फिल्म देवानंद और वैजयंतीमाला की फिल्म हिट थी, और हिट था संगीत भी.

0: कौन किसी को रोक सका है। सयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा पंछी एक दिन सबके सामने उड़ जाना है।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Let me tell you the rates. भाई LemFi वाले एक पाउंड के बदले इस समय दे रहे हैं इंडियन करेंसी में 128 रुपीज एग्जैक्टली, और पाकिस्तानी 375.7, बांग्लादेशी टका 166.43, श्रीलंकन रुपए 444.19, अफगानी 88.32 एंड श्रीलंकन तो बता दी ना, केनियन शिलिंग्स 175.18.
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
3: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is sold at the rate of 104.26 pounds per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड.
1: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
2: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
3: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
4: I left behind everything I knew.
3: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
4: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
3: The cycle of love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
5: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
6: और मनोरंजन के समापन का समय हो गया है. बहनों भाइयों, आपसे इजाजत लेते हुए एक दरखास्त करूं कि शेर लिखते रहो, गीत गाते रहो, जख्म दिल मत गिनो, मुस्कुराते रहो. जिंदगी भले टूटा हुआ साज है, इस पे उल्फत के नगमे सजाते रहो. बाली भाई का इंतजार कीजिए, मुझे अनुमति दीजिए. बाय बाय.

मैन ओ मैन, क्या गाने क्या गाने, मज़ा आ जाता है। कभी कभी कुछ गाने बड़े अरसे से नहीं सुने होते हैं तो दिल खुश हो जाता है। मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल मैसेजेस हैना। एंड वी गॉट हमारे दिनेश पोपट जी एंड मनु भाई एंड योगेश हंसावोड़ा, वी गॉट मिकी पाजी एंड मिसिस चियांग, थैंक यू वेरी मच एंड ऑलवेज नाइस टू सी यू ऑन मंडे मॉर्निंग।

And whenever I play this song, it's always dedicated to Farida Ghulam Ali, and she is crazy about this song. Not only this song, many of the Sri Ramchandra songs. Now, why am I playing these particular songs? Because we are remembering a great personality in the film industry, that is Pyare Lal Srivastav. Pyare Lal Srivastav? Toh fir P.L. Santoshi kaun hai? इन्होंने अपना नाम एक्चुअली जब बॉम्बे आए थे तभी प्यारे लाल संतोषी ने अपना नाम नेचुरली पीएल संतोषी कर दिया था बट ही वॉज बोर्न विद अ डिफरेंट नेम ऑल टुगेदर एंड इट्स प्यारे लाल श्रीवास्तव. प्यारे लाल श्रीवास्तव ने अपना नाम जब बॉम्बे आए थे तब शॉर्ट फॉर्म करके प्यारे लाल संतोषी कर दिया था. Anyway, let's get on with the details. P.L. Santoshi was known as a jack of all trades. Some people say, I don't think so, but I'll tell you. He was a director of films. He was also a screenwriter of films. He was a lyricist. इतने सारे गाने इन्होंने लिखे. आपने ये दो जो गाने अभी सुने, यू नो हम पंछी एक डाल के, और ये गाना जो आपने सुना आना मेरी जान संडे के संडे, ये पीएल संतोषी ने लिखे थे. हम हमेशा ये सोचते हैं कि एन दत्ता ने वो म्यूज़िक दिया था हम पंछी एक डाल के, और सी रामचंद्र ने म्यूज़िक दिया था और गाया भी था उस गाने के अंदर आना मेरी जान संडे, लेकिन गाने लिखे थे पीएल संतोषी ने. यस, ही वाज नॉट ओनली अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अ स्टोरी राइटर. दैट मींस ही वाज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. एंड जिसको हम कहते हैं हरफन मौला. हरफन मौला कौन थे हमारी इंडस्ट्री के अंदर? It was to start with, you can say Kidar Sharma, you can say Prem Dhawan, फिर थे Raj Kapoor Ji, Vijay Anand, multi-talented these guys. They would sing, they would act, they would direct, they would produce, they would edit, they would do screenplays, screenwriting. एंड सबसे बड़े हरफन मौला हमारी इंडस्ट्री के किशोर कुमार, जिन्होंने म्यूजिक भी, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, गाने भी लिखे, गाने गाए भी, प्रोड्यूस भी की फिल्में और डायरेक्ट भी की फिल्में. इनको कहते हैं हम हरफन मौला. एंड सो इज पी एल संतोषी. डोंट फॉरगेट, ही वोर मल्टीपल हैट्स. एंड कभी डायरेक्टर की हैट पहन के फिल्म डायरेक्ट की, फिर उसके बाद लिरिसिस्ट की हैट पहन के इन्होंने लिरिक्स लिखी फिल्म की, कभी स्टोरी राइटर की हैट पहन के फिल्म की स्टोरी लिख ली. अब मैं आगे क्या बताऊँ आपको? इट कुड बी डिवोशनल गाने हो या फिल्म हो या ट्रिवियल या ह्यूमरस हो या रोमांटिक हो, फिलोसॉफिकल हो, पैथोस के साथ भरी हुई फिल्में हो. ही used meaningless words in his lyrics sometimes, you know, jaise ke he, ha and tarara, aise aise lyrics wo likhte the. Lekin us zamane mein teenagers ke liye ek craze ban gaya, jaise aana meri jaan sunday ke sunday, oh gana craze ho gaya because he wrote the lyrics and they were so catchy. अब इनके बारे में आगे मैं बात कहूँ तो बचपन में ही, ही वॉज बॉर्न इन जबलपुर. जबलपुर में पता कौन से एक नाम तो मेरे जहन में आता है, एंड दैट इज आदेश श्रीवास्तव, हु वॉज ऑल्सो बॉर्न इन जबलपुर. नाउ पी एल संतोष बॉर्न प्यारे लाल श्रीवास्तव, हाईली वर्सेटाइल फिगर, इतना मैंने अभी तक आपको बताया. अब इनकी करियर के बारे में हम बताते हैं. ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स. बचपन से ही यूज टू गो इन कवि सम्मेलन एंड ऑल दैट. एक बार एक गांव में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसमें उनको एक चांस मिला था. बाय द वे, इनके पिताजी हेडमास्टर थे उस स्कूल के, एंड इनको चांस मिला असिस्टेंट डायलॉग राइटर

0: फिल्म है सरगम 1950 की. वी आर रिमेम्बरिंग पीएल संतोषी. और इस गाने में तीन राग हैं, आसावरी, इट्स देवगंधार एंड जौनपुरी. व्हाट लवली म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय पीएल संतोषी. मैंने कहा था ना, दम है बात में. मजा आया ना. सी रामचंद्र का संगीत है और पीएल संतोष की लिरिक्स.
1: ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स. जस्ट ऐड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स.
0: आई होप यू आर एंजॉयिंग द ट्रिब्यूट एंड द फिल्म्स दैट पीएल संतोषी आर इनके साथ जो फिल्में जुड़ी हुई हैं, जैसे कि शहनाई एंड देन सरगम एंड हम पंछी एक डाल के, बरसात की रात, ओपेरा हाउस, दिल ही तो है. तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दो गाने स्क्वीज इन कर दूं आपके लिए. सुनिएगा.
2: On this week's Like a Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
3: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे, अपने बड़े की, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, जमाना हमारी इज्जत करे. और जिसने अपने गुरु की और माँ बाप की दुआ दे दी, उसको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता. बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाता है.
2: Like a Extra is here. Search for our podcast, Like Extra, on all major streaming platforms. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3537, Indian rupees 127.99, Afghan Afghanis 88.56, Pakistani rupees 375.74, Kenyan shillings 175.23, and Mauritian rupees 63.47.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.59 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold. Across London, this is Bali Brambat on Leica Gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
5: Oh, your school has just emailed your flu vaccine form. I'll do it now.
6: Do I have to have that?
5: Yes, it's a quick and painless spray up your nose that helps stop you getting really poorly with flu or passing it on to Nanny and Grandad.
6: Okay, then.
5: If you have a child in reception to Year 11, help protect them with a flu nasal spray vaccine. Your child's consent form could arrive by email, text, through your school app or in their bag. Look out for it and complete it. Find out more at nhs.uk/child-flu. Stay strong. Get vaccinated.
7: Gold Afternoons with Bali Brambat.
8: Bali Brambat.
7: Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
9: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
10: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
11: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
10: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
11: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
12: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
11: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
13: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
8: डेजर्ट सफारी,
13: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
8: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
13: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
14: साफो ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।

पी एल संतोषी डायरेक्टेड दिस फिल्म. इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय अलहद चित्रा. But what a beauty. पर आगे जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, that is to end this hour in a beautiful way. Yes, I mean a beautiful way. Because इन्होंने जितना रंग दिखाया अपनी लिरिक्स से, वैसे ही एक फिल्म की स्टोरी कही, कहानी लिखी और उसके अंदर संगीत भी बड़ा हिट रहा. सुनेंगे तो सुनिए.

फिल्म है बरसात की रात। पीएल संतोषी ने डायरेक्ट की, स्क्रीन प्ले भी इन्होंने लिखा टुगेदर विद भरत भूषण एंड सरशार शैलानी हु डिड द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म। इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय आर चंद्रा और रफ़ी अजमेरी ने स्टोरी लिखी थी, लेकिन ये डायरेक्शन वॉज सुपर्ब। रोशन का संगीत था, सोनिक का बैकग्राउंड म्यूजिक था और गाने तो वो सुनिएगा पूरी कवाली आज।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
2: गुरु गुरु,
4: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
5: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
6: टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
7: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
8: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
9: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain, to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaiye Minar Jewelers par. 181 Upper Tooting Road. या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
10: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
11: Okay.
10: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
11: The legend Kavita Krishnamurti performs live at the Royal Albert Hall on Sunday, 1st of November. Brought to you by Sanatan Events as a Diwali special. Tickets from the venue box office. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Hariharan and Kavita Krishnamurti singing song from film Boxer, 1983.

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, Atoll Protected.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ. Mantra Holidays. What's your travel mantra? 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
5: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11, 11.
6: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
8: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
9: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
10: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
11: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
12: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: सवेरे वाली गाड़ी 1986 सुरेश वाडकर और आशा भोसले, लेकिन मैं तो अभी शाम वाली गाड़ी में चला जाऊंगा बिफोर इट स्टार्ट्स पेल्टिंग डाउन विद रेन एंड इट्स गोना बी सैंडी शाह हु इज गोना जॉइन यू एंड राज पतन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स. बाली का नमस्कार.
1: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio.
0: एक नजर पत्ता पत्ता बूटा बूटा
2: पत्ता पत्ता बूटा बूटा
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी की लिरिक्स. रफी साहब